0: चौंकी, चौंकी तुम्हें कोताए, चौंकी, चौंकी आमी आश्चर्य, चौंकी, आमी आश्चर्य।
1: शायद अपना होटल।
0: हाँ।